फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं 2000 पाउंड का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th ऑगस्ट। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विद वन एंट्री पर हाउसहोल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू ट्राइड दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती। अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
0: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
1: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना साडा सोना
1: वसीम ज्वेलर्स।
2: When the sport's on, you might feel your heart in your mouth, butterflies in your stomach, or a churning in your gut. That's fine if it's just the action. But if it's heartburn or indigestion, try Gaviscon Double Action Tablets for pocket-sized, on-the-go relief. Don't let your heartburn or indigestion spoil your day. Gaviscon Double Action Chewable Tablets for heartburn and indigestion. Always read the label.
3: Attention restaurants, takeaways, caterers, retailers and wholesalers. It's here. The ITAG Desi Independence Food Festival and Trade Week. 3rd to 9th of August 2026 at ITAG Cash and Carry Southall. Open 24 hours a day, 7 days a week. Yes, you heard it right. Shopping after midnight, early morning stock up, afternoon top up, late night emergency supplies. We never close. 24 hours a day, 7 days a week. All under one roof. Come and discover thousands of unbeatable wholesale deals, including Kohinoor Rice, Tilda Rice, Ahmed Tea, Cow Choice Dairy Range, quality ice cream, fresh fruit and vegetables, catering supplies, and thousands more fantastic products. Don't miss our live tasting and product sampling on 5th and 6th of August with exclusive promotions, special discounts, and amazing offers available throughout the week. Whether you're a restaurant, takeaway, cafe, caterer, retailer or wholesaler, ITAG is your one-stop wholesale destination. ITAG Cash and Carry, Unit 1 to 3, Southbridge Way, Southall UB34AX, 020-3393-5225. ITAG Wholesale, open 24 hours a day, 7 days a week. Everything your business needs, all under one roof. Come for the deals, leave with the savings.
4: लोग कहते हैं ना, एक से भले दो, जस भी ऐसा ही कुछ सोचा था। बट एक बीवी एक गर्लफ्रेंड को लेकर जस की लाइफ में डबल इश्क और डबल ट्रबल। क्यों? क्योंकि है जवानी तो इश्क होना है। ओनली ऑन Z5।
5: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.

0: up next on Sunrise.
1: Coming up, it is Mashuka with a C-score and Dev Negi. Keep it locked.
2: Travel Hub, your safari specialist. Explore Masai Mara and the wildlife.
3: Visit Zanzibar, enjoy breathtaking holidays to Maldives, Mauritius, Bali or Sri Lanka.
2: At low, low prices. Visit travelhubworld.com or call 0208-782-8833. At all protected.
4: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन स्नान या दूसरी सहूलियत दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर
5: The Manchester Mega Mela is back on Saturday 1st and Sunday 2nd of August at Platfields Park, Rushow, Manchester from 12 noon till 9 p.m. on both days featuring performances by B2, Apna Sangeet, Summer Blake, Ramit Sandhu, Lemba Husseinpuri, Circus Raj, Rajasthan Brass Band, Zahir Abbas, Kawal and Party, Hobajan Dalwar, Roach Killer, and many more artists. Main stage hosted by Sunrise Radio, with a fun fair, kite flying, henna and face painting, children's corner, Asian bazaar, and Asian food. Free entry for the whole family. TV partner B4U Music. Radio partner Sunrise Radio.
6: Herald, a new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald 2026 catalogue today. Call 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald Packaging, available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade, visit heraldpackaging.com.
7: अब वरुण धवन की बात हो और एक्स्ट्रा ना हो तो कैसे चलेगा एक्स्ट्रा लव एक्स्ट्रा टक्कर एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड एक्स्ट्रा प्लॉट ट्विस्ट लेकर वरुण आ गया है जवानी तो इश्क होना है ओनली ऑन Z5